0: भिन्न
1: कर्म करत हो वैने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
2: काम फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भक्त की संग राखे
1: मन तन अंतर सिमर

0: जिद लाओ जिद लगना नानक करते की जाना करता रचना।
1: कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर को पाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए
1: कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट सस्य सून नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सर छतर
1: सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस पावे।

0: एक सतत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक
1: राहु बोला पंच प्राणी अगम गोचर प्राण वाणी
0: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाए सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद है सा प्रभ जपने
1: अमृत पीरा अमृत होए
0: उस पर पुरख का नाही कदे बिना

0: तपत माए ठाट बरताई अनद पिया दुख नाठे पाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूरने उपदेशे
0: पहुँचू का निर्भो होए वसे सगल ब्याद।

0: संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार करण कार सो प्रभु समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हर बात
1: यह तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे
1: जिस तन को चार कुंट उठावे सो तन सेवा ते पावे
0: जिस सो को नित पाछे बीत सो सुख साधु सदा संग प्रीत
1: जिस सुख को करे भली करनी सा सुख पज हटी सगनी
0: नानक अपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखत लाए
1: सर्व निदान हर नाम निदान जप नानक कर गया परवान
0: मन पर बोधो हर के नाए दैत सतावत आवे ठाए
1: ताको बिघन न लागे कोई जा प्रभु का प्रसन्न हर सोए
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ
1: पाओ बिनसा पूर्ण होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश
0: नित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी
1: सत विचार कर जम साचा जम मरा सो काटो काचा
0: आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग सन गुरदेव
1: यो रतन जन पावे हर हर सिमर नाम आधार
0: उपावना शूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे
1: हर की भगत करो मन लाए मन पंचक नानक बलवाए
0: सांगन चालस तेरा तना तू क्या लावटा वह मूर्ख मना
1: सत मील पटाम रमता इनते कहो तुम कवन सता
0: राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन सुटकार
1: असस्ती रत सुवाली झूठा डंक झूठा साली
0: ये तिस बुझे न बेगाना ना विसार नानक पछताना
1: गुरु की मातु ले ज्ञाने भक्त बिना डूबे जाने
0: भक्त करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के दिल बिगाहे
0: आप जपो अवरा नाम जपावो संत कहत रहत गत पावो
1: सारभूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ
0: गुण कावत तेरी उतरे समैल बिनस जाए होमे बिख फैल
1: होहे चिंत प्रसाद सुख नाल सास ग्रास नाम समाल
0: सगदी मना साध संग पावे

0: चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की निसनीत
1: एको आधार नानक मागे नाम प्रभु सार
0: प्रभु की दृष्टि महा सुख होए।

0: आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो
1: हर धन की पर लिहो भंडार नानक गुर पूरी नमस्कार
0: कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद
1: नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित भव नयन एक एक रूप जाके।

जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते पाघीण जम पास। जो सतपुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन

तुम है छाड़ कोई अबर ना ते आऊं, जो अबर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सतर हमारे मारिया है।

चवन काल जो कि शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।

नमस्कार तिसि को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने।

जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका

रज से तजकिनी उत्पुज खान बहुर रज दीनी। कहो फूल राजा होय बैठा कहो सिमट पयो संकर एक कैठा। सिगरी श्रेष्ठ

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। केल बिख सकल देहे को हरता, दोस्त दोखियन को छय करता।

चौपाई संबत 17 सहस प्रणिजय अर सहस वंतीन के हिज्जय पादर सुदी अष्टमी रववारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुदारा एत श्री चित्रोपख्याने त्रेया चरित्रे मंत्री भूप संबादे 405

अग्नि सो महाकाल रखवार हमारो महालोह में किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गेहि की लाज बिचार अपना जान मजे प्रत परिया।

अहनस सहज सुपाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण हो वै सिफत थसम दी नूर अरसों कुरसों।

सिमरह शिव प्रदान प्रभु सिमरह शिव महता जी प्रभु सिमरह शिव स्वर्ग राज प्रभु सिमरह शिव सुखवासी प्रभु सिमरह सदा बनासी सिमरन जी रागी जना दयाल नानक जानक मंगल वाला प्रभु सिमरह शिव परोपकारी प्रभु सिमरह तुम सद बरहारी प्रभु सिमरह शिव मुख सुहावे प्रभु सिमरह तुम सुबिहावे प्रभु का सिमरह तना तुम जीताओ प्रभु सिमरह तनर्मर जीताओ प्रभु का सिमरह तना आनंद कनेरे प्रभु का सिमरह बस हर नेरे संत कृपा ध्यान दिन जाग नारायण सिमरन पूरा पाग प्रभु का सिमरन कार पूरे प्रभु का सिमरन कब हो न चूरे प्रभु का सिमरन हर गुण बाने प्रभु का सिमरन सहज समाने प्रभु का सिमरन निश्चलासन प्रभु का सिमरन कमर विगासन प्रभु का सिमरन अनहद जन कार सुख प्रभु सिमरन कांतन पार सिमरह से जन जन का प्रमाया नानक जन सरणी पया और सिमरन कर भगत प्रगटाय हर सिमरन वेद उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच जह कुंठ जाति हर सिमरन धारी सब धरण सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की जो सकल अकार हर सिमरन महा निरंकार कर कृपा जसा हो जाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया सलोक दीन दर्द दुख पंजना घट घटना थानाथ शरण तुम्हारी आयो नानक की प्रभु साथ अष्टपदी जह मात पिता सुतम इतना पाय मनुहा नाम तेरा संग सहाय जह मह पाय दू जम दर तह कीवन नाम संग तेरा चल जह वस्त्र वयात पाय हर को नाम खन मह उदारी अनक पुनः कर्म करत नहीं तारा हर को नाम कूड़ पाप पर हर गुरु नाम जप मन मेरे नानक पाव सुख मेरे सब श्रेष्ठ पुराजा दुखिया हर को नाम जप दो सुखिया लाख करोरी बंधन पर हर को नाम जब तो निस तारा अनुक रंग देखना पुर जावे हर को नाम जब आ गावे जिह मार्ग जात अकेला ते हर नाम संहो सोहिल सनाम मन सदा तु आई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूटत नहीं कूट लख वाहि नाम जब तो तह पार वाहि अनुक बेगना

छोड़ जायो तस्का श्राम करा संग सहाय दख पर हरा चंद ले पे अवतारा तोय कर तो प्रिय त पसंग संग होयां गु मह पद तो बिकरा नन कर लेहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मन से जा तो लोग विचारा करा धन रा तो बाहर की अंतर मन वाया शब्द नाह काश कर सुपाय बाहर के अंत आने सना अंतर व्याप रूप स्मर अंतर गना बाहर तन स्वाह गल पात्र कैसे उतरा था जाके अंतर बस प्रभाव नानक जन सहज समाया तो सुमर अंधा के समर पाव कर कह दे होट ने बहावे कह बुजार पूजा डोरा ने कही है तो समझा पूरा कह विष्णु पाद गावे गुंग जतन कर तो पी स्वरूप अंग कह कंगर पर्वत पर पवन नहीं हो तो वह सकवन करता करुणा में दीन बेनती कर नानक तुमरी कृपा तरा संग सहाय सुहावना चीत जो बैराग ता सुप्रीत बरुआ की

संतन हृदय करना सना को कुंद हते जाने आस का मंदा गुरु प्रसाद विखे पर हरे मन की बात न मान दे टरा इंद्री जेत पंच दुख दे रहत नानक कुटुंबति को ऐसा परस वैष्णो सो जहु प्रसो प्रसन्न विष्णु कुमार तो कोई भिन्न कर्म कर तो वह नहीं परम दह वैष्णो का निर्मल कर्म का फल की इच्छा नहीं बाच है केवल भगत कीर्तन संग्राच मंत्रांतर सिमरन गोपाल सब प्रभु कृपा राव दृढ़ ब्रह्म जपाय नानक वैष्णो परम गत पाव भगवत भगवंत भगत करंग सकल त्याग दोष का संग मान देव बिन सा सगला परम कर पूजा सगल पार ब्रह्म शासन पाप मल को वह तो भगवत कुमार तू तुम वह भगवंत की टह कर नियत नियत मान तन अर्प विसन प्रीत हर के जन हृदय बसा नानक भगवत भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध राम नाम आत्म सोद राम नाम सार रह विवास पंडित का उपदेश जाग जीव हर कथा हृदय बसा सो पंडित फिर जो नाल वेद प्राण समृत पूजा मुगुर सुख मह जान सतगुर जह वरना को देव दीस नानक पंडित का सदा दीस बीज मंत्र स्वरूप ज्ञान जह वरनाम जपै को नाम जो जो जपै दस गिगा तो सा संग पावे जन कोई कर कृपा अंतर वर तार पस प्रेत मुकुल पात का उतार सर्व रूप का योग नाम कल्याण रूप मगर गुण का मन का जुगत के दाना पाय धर्म नान तह मेला जस लिखा तुर कर्म जस का मन पार ब्रह्म कन वास्तु नाम सत राम दास आत्म राम धन अद्रिया दास संतरण पाय तन पाय सदा निकट निकट हर जान सो दास तर्क प्रवाह नंदा खाप कृपा कर दास कहो सब सोजी पर सकत संगा तुम दास सुजुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुक्त सौ कहावे

बृहस्पति कई कोट कोई पुजारी कई कोट आचार्य व्याव हरि कई कोट वैद्य दास कई कोट बन क्रमहदास कई कोट वेद के स्रोत कई कोट तपि स्रोत कई कोट आत्म ध्यान अंतर कई कोट कव का विचार कई कोट नावत नाम देवनान करते कंदन पाव कई कोट पय अभिमान कई कोट अज्ञान कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिघा तुमने कोर कई कोट पर दर्भ कव रह कई कोट पर दुख न कर कई कोट माया श्रम वाह कई कोट प्रदेश क्रम वाह जित जित लाभ तेत तेत रखन नन करत की जान करत रजन कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रह होगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख न बजाए कई कोट पावन पाणी वह संद्र कई कोट दिवस भूमंडल कई कोट शशिर सुर न कियत कई कोट दीव दान इंद्र सर शत्र सागर समाग्री अपनाय सुख तारा नानक जह जह पाव देश तहन तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण समृत रसा सत कई कोट की रतन संबद्ध कई गुणान प्रकार जानत

कदुरा गुरु प्रसाद नानक सच कह कबहु हुई पंडित करे बख्यान कबहु अंतर लग ध्यान कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधिक मुह ज्ञान कबहु कीट हस्त पतंग गिया।

अनगत तपस्या करे अहंकार नर सर फिर करे अवतार अनक जतन कर आत्म द्रव हर तरग कहु कैसे गवे आस पर जो पलक हवे तस पलाय निकट आवे सर्व गिरि जाक मन हुए कह नानक ता के निर्म सक जब लाग जान मुझ दे कह शुभ ता विस कहु सुख नाह कोई जावे हे जान मैं किस करत तब लाग कर जन्म फिरत जब तारे को बैर मिलता लाग निश्चन किए जब

वारण घट घट सुनि श्रवण बखियाण। पवित्र पवित्र पवित्र पनीत नाम जप नानक मन प्रिय श्लोक। संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार। संत गिनंदा नानक बहु बहरे अवतार अष्टपदी। संत का दुख नार जकट संत का दुख जम तिन छुटा। संत का दुख न सुख सब जय। संत का दुख नरक मा पाय। संत का दुख न मा तो एम। संत का दुख सुबह दिन। संत के हते कार कन कोय। संत का दुख धान प्राप्त होय। संत कृपा कृपा जी कर नानक। संत हनुमंत कबीर तारा। संत के दुख दे मुख पवे। संत का दुख न काग जुन रवे। संत का दुख न सर्प जोन पाय। संत का दुख न त्रिगत जोन किरमाए। संतन का दुख न तृष्णा माय करे। संत का दुख सब को शर। संत का दुख न तेज सब जाय। संत का दुख न नीच नीचाय। संत दुख का था को नाहि। नानक संत पावे तो विगत पाए। संत कनंद को महातताय। संत कनंद को खेन टिकन न पाए। संत कनंद को महात्यारा। संत कनंद को परमेश्वर मारा।

जियो। साधु की तू गुर करव स्नान साधु पर जागिया कुरबान सा सेवा बड़ भाग्य पाया शासन हर की जतन गाय अनक विघन दे साधु राख हर गुण गाय अमृत राह जाख वट गह शांत है तराया सर्व सुख नानक तेह पाया मृतक पाओ जीवन नर भूखे को देवत आधार सरन धन जाग दृष्टि वाह प्रभु देख का लहन वाह सब गह का करना जोग दिस बिन दूसर वह न होग जाप जान सदा सदा जन रंग सब ऊंचे निर्मल करणी कर कृपा स्वनाम दिया नानक हो जान।

कार्य सगला कारण दारू पुरिया सब कम नाम का संगोत्र संश्रावण कार कृपा जैसा अपने नाम लाय नाम चौथे पाद में सोजन का दुपाय सात जाकर सत्य स्थान पुरुष सात केवल पर दान कर तू सात जाकर बाणी सात पुरुष समय सुमारणी

प्रभु से उर्देव जे जो प्रभु अग्नि शिवराय आनंद सो शिव कर दह प्रगटाया निधि गिरि मह काल राख पास।

जाय प्रभु ने सुन रहे ये समाय जो हुआ हुआ तो सुब जाने प्रभु ने का कुछ जाने देख में हम कान वकान उन दस का गुण कही कना जानो आठ पहर

सपा मिटाव। अवर श्याम सभी शारद जन कुन सिवा लागा वन जान हूँ भी तेरा नानक जन की पूजा हूँ साध पैरा सरोग साध पुरख जन जाने साधु दुखा ना हूँ दुखा संग से खुद रहे नानक हर गुण गावे पति साध पर सेख की करा प्रद पार सेव कपुर सदा दयाल सेख की गोर दौर मत मारे हरे गुर बचन हा नाम उचरा साधु गुरु सिख बंधन काट गुर का सिख विकार जाट सब सिख को नाम दान दी गुर का सिख उठ बागी हिया साधु गुरु सिख हरत बल तो सवार नान साधु सिख जीवन सुमार गुरु।

उपासारी जेन दीयत हुआ न बेगा न विषा न कुशता न कुछ मात तुम लिख ए आने भगत बिना बड़ू विषय हर कृपा कर मन भी निर्मल तुम्हारो चीत

सिमर सुख पाय बहु आप जप अब रह नाम जो पाय बहु भगत पाय दर्ग संसार बिन भक्ति तन हो सीसार सर्व कल्याण सुख निदना जात पाय विश्राम सकल दुख का विनाश नानक नाम जप कंता सुख प्रीत प्रेम रह चा मन तन अंतर स्वयं प्रियतर सर सुख मन विकसा साध करन तुय भगत जन कम तन रंग बेला को पाव संग दिव्य करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कहीं न जाय नानक रहया सर्व समाय प्रभु संग दीन दयाल भगत बचर सदा कृपाल

कहावत पुंडर को सर्वं चावताल जान माया जंजाल हों मैं बुध परम पार दुख सुख मान अपमान हर प्रकार की उपज्ञान अपन फिराव कर दिखाई कील संकोचा तम नानक कह जह आप गत भगत तह आप जह पसर पास हर संत प्रताप दुख पह कया पह तन उनकी सुबह नुह बन आप कौतक कर आनंद जुगो जाप रह भोग निर्जोग

ग्रहण दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारे आप ही का विस्तार जान पाव तुम सृष्टि जो पाए या अपना पाण रे समय तुम ते पिन ने किस हो आप सबूत सब जग पर जाको प्रभु जी वा बुझाई सच नाम सूजन पाई सू सम दर्शी दत्त कबीरता नानक सब सृष्टि का जीवता जी अजंतर सब ताक हादीन दयाल अनाथ अनाथ इस राखत कोई ना मारा सोमवाज मन बसार तेह ताज अवर कहाँ को जाय सब सिर एक निरंजन राय जी की जुग जाक संहार अंतर बह जन साध गुण निदान बेअंत अपानंद सदा बलहार पूर्ण पूरे दयाल सब प्रभु कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामे रहे बिया परत पारा जीवन वह पात जो जो रचियो सोत से त्यात देखो पावे तह लय मिलाय भक्त करे हर के गुण पाए मन अंतर विश्वास करमान्या करुणा नानक के जानिया जन लागो हरि का नाय दस्तियास न विरति जाय सेवकाओ सेवा बनाई।

संबंध भाव जाय साच व्यापार करह व्यापार दुर्गा निवह के उद्माज काटे क्रख मन वास नानक वहन आवह जाहि देह ते दूर कहाँ को जाय उबरा रख नारति आय निरपाव जप सर पा मट प्रभु कृपा तु प्राण छोट जप प्रभु राख दह नाह दुख नाम जब मन बुध सो चिंता जय मट अहंकार दह जन को कोई न पहुँचनार फिर ऊपर ठाठा गुरु सूरा नानक ताग कार पूरा मत पूरी अमृत जाग दृष्ट दर्शन पीपता उदरत श्रेष्ठ जन कमल जाग अनुरूप सफर दर्शन संदरहा रूप तान सेवा सेवक परवान अंतर जन पर प्रदान जिस मन बासा सोधन हाल ताक निकनावत काल अमर पय अमर पद पाय सत्संग नान करते आया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान दीर्घनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंदर प्रभु डीठा नाम प्रभु करागम मीठा सगल सिमी गरी कटवाहन करंग नाना

पापिकः आज्ञावक जायिनान जं पवतने संवायति हुए सो नाहि पुरा उरे कहु किन काशकरा परा कर दूतादनि किया प्रजाने अपने जी किया साजदारी सब साज ओत पोत आपन संगरा चुता की गात मेत कही न जाय दूसरो यदन सोजी पाई तसका किया सब प्रवान गुरु प्रसाद नान की हो जान जो जान देश सदा सुख हुए आप मिलाई लय प्रसोई ओहो तानवंत कोलवंत पातवंत जीवन मुक्त जसरदा भगवंत तन तन तन जन आया जस प्रसाद सब जगत त्राया

अष्टपदी पूरे गुर का सुनपदी सब पार ब्रह्म कर पीख सास सास सिमरा गोविंद मन अंतर की उतरा चिंद आस अनियत त्याग उतरांग संत जन के दूर मन मांगा छोट बेंदी करहु।

सबरी अमृत नाम साधु सन लैन सुप्रसन भई गुरदीप गुण होय सेवक सेव आर जंजाल विकार ती रहती राम नाम सुन रसना कहती कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निबहि केव हमारी प्रब की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चित सुमरि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बस सोतन धान सर्व इच्छा था कि पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब डोए सब तीउ जपाया स्थान बहर न हुआ मन जान हर तन खाट चल जन सुए नानक जिस प्राप्त किम शांत रिद नव निर्ध बुद्ध ज्ञान सर्वन सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ गुतम स्नान चार पदार्थ कमर प्रगा सब गमत सकल देवदास सुंदर चतुर तत् कविता सुंदर सी एक दृष्टिता इह फल तिस जानक मुख पने गुर नानक नाम वचन मन सुने इहु निधान जप मन कुए सब जुग महता की गत होए।

हैं, आदेश है, अपेस है, भुजंग प्रया तुच्छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निधानी नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञान नमो परमतान नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वत्प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पानी सर्वं वाणी सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं युक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्व प्रसाद आद रूप अनाद मूर्ति और पुरख पा सर्वमान देव पेवाद दर सर्व पाल सर्व काल सर्व कोपन काल जातर जातर विराज अवधूत रूप विशाल नाम ठम न जा जा कर रूप रंग ना रेखे आद पुरखदार मूर्त जवन आद असेख देश और ना भेष जा कर रूप रेख ना राग ततर ततर दिशा विशा हो फैलो अनुराग नाम काम बहिन देखता हूँ नह जाय सर्वमान सर्वतमान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव न जानी जे वेद और प्रतीप रूप रंग ना जात पास उजानी के जे

मूरत पूर्ण पुरखा पार सर्व विस्मृत्येव स्वयं पव कर्ण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सुपरम रहते अभूत अलख अभि संग राग नारंग जाके जात पात नाम गर्व गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दाय काम आप रूप अमीक अन उस्तत ए पुरख अवतूत गर्व गंजन सर्व भंजन याद रूप असूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व काय सर्व को प्रतिपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अंतेख सर्व शास्त्र न जान हिंदे रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नीत पाखत नित कोट स्मृत पुराण शास्त्र न आव ही भोचित मद भार छंद प्रसाद गुण गन उदार मह माया पारा संतम उपमान अंगन पव प्रकाश निस्तृण ना सज

हरियं करियं करिमो रहिमे। चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपुते।

ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं तबे उबाच बेनती चाव पई, हमरी कृपा दे रचा पूर्ण होए जिसकी इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुस्सबै तुम काबो, आपा दे मोहि बचाओ। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै करतारा। मोह रक्षा निज कर दै करियै, सब बैर को आज सुंदरियै। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतर हमारे मारिय। आपा दै मुदय अभरिय, मरण काल का त्रास नवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजो करिहो रक्षा। राख लह मोहि राखन हारे, साहिब संसहाय प्यारे। दीन बंधु चुन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए सिंधु अवतरा। काल पाए तर्प सन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत दक्षिण पजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार जिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलम बध कियो। घट घट की घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दुष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। जब उद कर्क करा करतारा, प्रजा तर्त तब देह अपारा। जब आकर्क करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रह निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभता। का मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा, से निरंकार का चीनत नेह भिव। आप आपनी बुद है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के बिद सदा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रखपयो राग कहि भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहर रच दीनी। कहूं कूल राजा है बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर एकैठा। सिगरी सिष्ट दिखाए अचं पव, आजुगाद स्वरूप सुयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत तो पाता, सकल मलेच्छ करो रण काता। जे अस्तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सबटारे। जो कल कोई कबार त्यै है, ताके काल निकटन है ऐ है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरैं तत्काला। कृपा दुष्ट तन जाए नहर हो, ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट छाछ वै सके न कोई। एक बार मैं संभारा, काल पास देता है उबारा। जिंदर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हा दैल है उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाय, दुष्ट दोख ते लह बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता। कल बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोख यन को छय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाँचत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़ल सुनै गुंग जो याहि सुरसना,

चौक पई संबत सत्र सहस पणजय अर्ध सहस पंतीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कुआ कतरे नहीं आन्यो राम रहीम कुरान कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमर शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री सपान कृपा तुमरी का।

लाज अस गोविंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती मन वधियां। वधाइयां राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां सबदो तां गाव। हरी के रामा जनी वसाया, कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो, हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारना अंगीकार, हो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सब नांगलना समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही, कर तेरा करता तेरा। सब कुछ है जिस दे है सो पावे, सदा सिफत सालाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही, कर तेरा। साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए, वसिया जन इच्छा सब बुझाइया।

सो क्यों मन हम विसारिया। जैसी अग्न उधर मैं तैसी बाहर माया, माया गुण सब इको जे ही करते खेल रचाया। जात सफाणा ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तिशना माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया, कह नानक गुरु प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

कह सन प्रेत पकड़ चलायन दूत जामा किसे न देनी भेत छड़ खड़ोते खिन माए जिन स्यों लगा हेत।

काम क्रोध न मोहिए विनसै लोभ सुहान सच्चे मार्ग चलदियाँ उस्तत करे जहान। आठ

दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच बारह माह बाणी ते जाप उपरंत गुरबाणी कीर्तन प्रहार दे महीने की कथा छे पौड़ी आनंद साहब जी के जाप होए पातशाह जी बाणी पढ़दे हां कीर्तन करदे हां कथा विचारा करदे हां होईयां बेअंत पुलां दी खिमा बख्शिश करनी हर दा महीना सुख सुखां दा बतीत करवाउणा सब दे घरां परिवारां बच्चियां दे सिर ते अपना मेहरा भरिया हथ रखना चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां दुखां कलेसां दे नाश सुखां दे प्रकाश करने मनोकामनावां गुरमत अनुसार पूरियां करनियां पातशाह जीओ आप जी दे हजूर कड़ा प्रसादी देग हाजिर है करी पाक सल सोच पवित्रा हुण लाभो भोग हर राय लग्या भोग सी प्रसाद साध संगत वरताउण दी आग्या बख्शो जो भी छके आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे पातशाह कृपा करनी बेटी मनीत कौर नंद सिर ते मेरा भरिया हथ रखना चढ़दियां कलां बख्शिश करनियां दुखां कलेसां दे नाश सुखां दे प्रकाश करने महाराज पाव पवित्र हुक्मनामे बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो जी हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शो और आप जी दे हजूर अरदास बेनती है जो गुरु घर विखे लंगर हाल दे विघन पै रहे हन महाराज लंगर हाल नूं संगतां वास्ते खोल के इन्हां विघनां नूं दूर करो चढ़दियां कलां बख्शिश करो पावन पवित्र स्थानां दी चढ़दी कला बख्शिश करनी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा

सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।

0: Stay here, okay? While you pray, okay?
1: हाँ बेटा ठीक है। बहुत प्रचार।

0: रख के गई थी, बगल में को टाइम नहीं होने वाला।
1: आज ना से
2: पढ़ती क्या होगा।

0: संग मोहि उधारो
1: सुख अमृत प्रभु नाम भग जन कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै प्रभ का सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभ का सिमरन काल पर हरै प्रभ का सिमरन दुश्मन तरै
0: प्रभ सिमरत कछु बिघ्न न लागै प्रभ का सिमरन अन दिन जागै
1: प्रभ का सिमरन भव न व्यापै प्रभ का सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्व निदान नानक हर रंग
1: प्रभ का सिमरन रित सिद्ध नानक प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभ का सिमरन जप तप पूजा प्रभ का सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ का सिमरन तर्क मानी
0: प्रभ का सिमरन

0: मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर
1: ये प्रसाद रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग
1: ये प्रसाद पाप अंबर हटावे तिसे त्या कथे और लुभावे
0: जय प्रसाद सुख सेज सोई जे मन आठ पहर ताका जस गावी जे
1: ये प्रसाद तू सब को मान मुख ताको जस रसन बखाना।

0: सजपरी
1: साध के संग मुख उज्जर होत साध संग मल सगली खोत
0: साध का संग मिटा अपमान साध का संग प्रकाश सुख ज्ञान
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत निवेरा
0: साध का संग पाए नाम रतन साध का संग एक ऊपर जतन
1: साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
0: साध का संग गोचर मिला साध का संग सदा पर फुला
1: के संग आवे बस पंचा साथ संग अमृत रस पुंचा।

0: जाने परमानंदा।
1: साध के संग नाही हो पाप, साध के संग जगा सर्याप।
0: आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई।
1: साध के संग न कबू पावे, साध के संग सदा सुख पावे।
0: साध संग बस्त अगोचर लहे, साधु के संग अजर सहे।